0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के

0: लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779810326117। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।

0: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरनी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
2: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
3: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
5: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो है उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
4: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $2,00,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट रानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम 4थे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर।

0: नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुसीबत में तीन व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,075 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में हम लेकर आएंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रक्षाबंधन विशेष कार्यक्रम।

1:40 पर हौसलों का कार्यक्रम तरन्नुम। 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 बजे का समय है कार्यक्रम गीतिका का, और इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

फौजी भाइयों, अब प्रस्तुत है आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है मेट्रो इन दिनों फिल्म से, अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे जब वी मेट फिल्म से एक गीत मोहित चौहान की आवाज में। बोल है इरशाद कामिल के और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

हमारा अगला कार्यक्रम है बंदगी के गीत और भजन। लेकिन कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

कल शनिवार है और रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आगाज होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम स्वर संगम।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर कार्यक्रम गुंजन और 1:40 पर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 बजे का समय है कार्यक्रम नजराना का और इसी के साथ हमारे कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। फौजी भाइयों, ये थी कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए, प्रस्तुत है भक्तिमूलक गीतों का कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत आइए सुनते हैं उषा मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है रक्षाबंधन।

बंदगी के गीत और भजन कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं नीलकमल फिल्म से ये गीत आशा भोसले की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं भक्ति मूल गीतों का कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये भक्ति गीत गोपी फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

आज रक्षाबंधन है। सैनिक भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ लीजिए प्रस्तुत है रक्षाबंधन विशेष कार्यक्रम।

बचपन में हमें कहाँ पता होता है कि ये छोटी सी रस्म हमारे जीवन की कितनी बड़ी स्मृति बन जाएगी। हम तो बस इतना जानते थे कि आज राखी है, बहन को उपहार मिलेगा, मिठाई खानी है और भाई को थोड़ा परेशान भी करना है। लेकिन समय बीतता है, बचपन पीछे छूट जाता है और तब समझ आता है कि इस छोटी सी राखी में दरअसल पूरा बचपन बंधा हुआ है। आज के इस रक्षाबंधन विशेष कार्यक्रम में हम उन्हीं यादों, उन्हीं भावनाओं को फिर से जिएंगे और उन सदाबहार गीतों को भी गुनगुनाएंगे। आइए सुनते हैं पहला गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

बचपन में भाई बहन की लड़ाई कितनी छोटी छोटी बातों पर होती थी। कभी खिलौने को लेकर, कभी टीवी के रिमोट को लेकर, कभी मिठाई के आखिरी टुकड़ों को लेकर। फिर वही भाई या बहन थोड़ी देर बाद एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। शायद भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरती ही यही है कि इसमें रूठना भी अपना है और मनाना भी अपना। रक्षाबंधन का दिन उन पुरानी यादों को फिर से सामने ले आता है। अब आइए सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथाओं में श्री कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग भी आता है। प्रचलित कथा के अनुसार एक अवसर पर श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। ये छोटा सा कार्य था, लेकिन इसके पीछे स्नेह और चिंता बहुत बड़ी थी। लोक परंपरा में आगे कहा जाता है कि जब द्रौपदी संकट में पड़ी तब कृष्ण ने उनकी रक्षा की। महाभारत में द्रौपदी के वस्त्र हरण और कृष्ण की कृपा का प्रसंग मिलता है, जबकि उंगली पर वस्त्र बांधने और उसे राखी से जोड़ने वाला प्रसंग लोकप्रिय भक्ति परंपरा से अधिक प्रसिद्ध है। इसलिए इसे रक्षाबंधन की निश्चित उत्पत्ति तो नहीं, बल्कि इस पर्व से जुड़ी एक प्रिय कथा के रूप में सुनना अधिक उचित है। अब आइए सुनते हैं राखी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

आज हमने गीतों के साथ उन यादों को छुआ जो शायद हम सबके भीतर कहीं सुरक्षित है। रक्षाबंधन हमें सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने की रस्म नहीं सिखाता, ये हमें याद दिलाता है कि रिश्ते निभाने पड़ते हैं, उन्हें समय देना पड़ता है और कभी कभी बिना किसी कारण के भी एक दूसरे को याद करना पड़ता है। आज अगर आपकी बहन आपके पास है तो उसके साथ बैठिए, अगर भाई आपके पास है तो उससे दो बातें कीजिए, और अगर दोनों ही दूर है

तो दूरी को बहाना मत बनने दीजिए। अब आइए सुनते हैं रक्षाबंधन विशेष कार्यक्रम में अंत में। अब सुनिए काजल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

सभी भाई बहनों को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके कलाई पर बांधी ये डोर सिर्फ आज का उत्सव ना बने, बल्कि आने वाले पूरे वर्ष आपके रिश्ते में स्नेह, विश्वास और अपनापन बनाए रखे। इसी शुभकामना के साथ आज का रक्षाबंधन विशेष कार्यक्रम यही समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए, प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम।

आप सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। अब आइए सुनते हैं अगली गजल, चित्रा सिंह की आवाज में। शायर है मदन पाल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व

0: बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
1: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
5: अपनी दो दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व

0: प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा बंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।
3: बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्योहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश

0: छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और टीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, फागुन फिल्म से।

अभी आपने सुना नमक हराम फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। अब सुनिए अभिमान फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। अभी दिन के 3 बजे से आप सुनेंगे FM रेनबो प्रसारित कार्यक्रमों को। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए निमिषा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, आदाब एंड गुड आफ्टरनून। स्वागत करती हूँ आपका मैं यानी नाज आपके पसंदीदा शो नाम है जिसका रेडियो डॉक्टर, जहाँ डिस्कस होता है आपकी सेहत से जुड़ा हर जरूरी मैटर। दोस्तों, कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन इसके लिए क्या करें क्या ना करें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। कैसे सुधारें अपना बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल और लाएं सुधार अपने डाइट प्लान में भी, हमें तफसील से बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर टी दिवाकर राव। आज है हमारे साथ, जो कि CGHS में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और साथ ही आयुर्वेदिक विशेषज्ञ भी हैं। सर, थैंक्स फॉर कमिंग एंड वेलकम टू द शो।
3: नमस्कार मैडम।
2: तो आयुर्वेद में छिपे सेहत के मंत्रा को हम समझें डॉक्टर दिवाकर सर से, उससे पहले अपने लिसनर्स को याद दिला दें कि प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, जिसे आप सुनते हैं हर दोपहर 3 बजे आपके फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। साथ ही आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। तो सर, शुरुआत उसी बेसिक सवाल से करेंगे जो आज शायद हर किसी के मन में है, एक हेल्दी बॉडी के लिए लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन रखें, कितना बड़ा रोल है उसका और खान पान का ध्यान रखना कितना जरूरी है।
3: सबसे पहले तो सबका नमस्कार। इस शो में जब भी मैं आता हूँ ये पहला सवाल ही होता है। हेल्थ को आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब ही है जो रोग है उसको दूर करना, और जो हेल्दी है ऑलरेडी या हेल्दी के आसपास है
2: जी,
3: उनको हेल्दी रखना, टू मेंटेन द हेल्दीनेस जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिया है कम से कम 3000 साल पहले। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आहार और विहार। आहार का मतलब है आपका फूड हैबिट्स या वैरायटी ऑफ फूड विच यू टेक, एंड विहार का मतलब आपका रहन सहन, आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, आप सवेरे कितने बजे उठते हो, आपका दिनचर्या क्या है, ये सब विहार में आता है। ये दोनों बेसिक इम्पॉर्टेंट पिलर्स है आपको हेल्दी रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना ही आप देख लीजिए, साल में हमारे यहाँ 6 ऋतु होते हैं। ऋतु हर 2 महीने में एक बार आता है, हमारे यहाँ 6 ऋतु है, तो 12 महीने में ये 6 ऋतु मतलब 2 महीने में एक बार आता है। तो ये ऋतु चेंज होने के एक समय होता है। जैसे पहला ऋतु है, जैसे इससे पहले ग्रीष्म ऋतु था विच इज समर, अब जो है वर्षा ऋतु है विच इज रेनी सीजन। तो ग्रीष्म ऋतु का जो आखिरी 7 दिन, वर्षा ऋतु का पहला जो 7 दिन, ये 14 दिन हो गए। ये जनरली क्या करता है, बीमारियां पैदा करने के लिए वो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक ऋतु जो है ढल रहा है धीरे धीरे, दूसरा ऋतु आ रहा है। जैसे अभी वर्षा ऋतु है, इसमें सबसे ज्यादा गंदा क्या होगा आपका, पानी। तो पानी से रिलेटेड जितने भी सावधानी बरतना चाहिए वो सबको ध्यान रखना चाहिए। और जनरली

0: रेनी सीजन में या वर्षा ऋतु में आपका डाइजेशन, डाइजेस्टिव पावर होता है ना, जिसको अग्नि बोला गया आयुर्वेद में, वो कम हो जाता है। मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव पावर ही 50% हो गया, पहले 100 था, वर्षा ऋतु में वो 50 हो गया, मगर आपने खाना जो है वही 100% खा रहा है। मतलब आप ले लीजिए 4 रोटी आप खा रहे हैं, जो आपको ग्रीष्म ऋतु में, जैसे समर में तो हजम हो रहा है, जैसे आपका रेनी सीजन आएगा वो आधा हो जाएगा। आप 4-5 रोटी खाएंगे तो उसका बाकी 2 रोटी पचेगा कब?
1: तो सर इसके लिए कोई फॉर्मूला आप बता सकते हैं जो आसानी से याद रखा जा सके कि किस मौसम में कितनी डाइट सही है और किस मौसम में कम कर देना चाहिए उसे?
0: इसके लिए आयुर्वेद में बहुत बढ़िया 2 चीज बताया, तो वेरी सिंपल है। एक होता है आदान काल, एक होता है आपको उसको क्या बोलते हैं जो बल पैदा होता है एक काल में, जैसे आदान काल है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, इसमें क्या है, देखिए आप बाहर जाएंगे तो स्वेट निकलेगा ड्यू टू गर्मी, तो आपके जितने भी जो सॉल्ट्स है बॉडी के वो बाहर निकल रहा है, आप जल्दी थक जाएंगे, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है, सॉल्ट इनटेक और पानी और बहुत सारी चीज आपको करना है। जैसे आप करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, आपको भूख कम हो जाएगा, जितना पानी पियेंगे तो भूख कम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें बैलेंस रखना पड़ेगा
1: जी, वाटर इनटेक,
0: हाँ वाटर इनटेक का बैलेंस रखना पड़ेगा
1: जी, बिल्कुल, इस पर बात आगे भी करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए।
2: नमस्कार सभी को, मेरा प्यार नमस्कार
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: अमित शाह जी, नाम मेरा ग्राम नंगोल है, आप उनकी से बात कर रहा हूँ
1: जी।
2: सर मेरा सवाल ये है कि जो खाना रखा हुआ होता है और जो ताजा होता है उसका सेहत पे क्या प्रभाव पड़ता है?
0: बहुत सही सवाल पूछा आपने अमित जी। देखिए ये जो ऋतु है जिसको हम वर्षा ऋतु बोलते हैं, इसमें खाना जितना फ्रेश खाना आप खा सकते हो वो खाना बेहतर होता है, क्योंकि इस ऋतु में मॉइस्चर बहुत होता है, उसमें फंगस लगने का, कुछ और इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, इसलिए खाना हमेशा इस ऋतु में खासकर फ्रेश लेना ही सही है।
1: एक और सवाल हमारे पास आया है सर, कर्नाटक से आया है ये सवाल, सागर जी ने पूछा है कि 26 साल इनकी उम्र है, सुबह उठने के बाद बहुत थकान महसूस करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या करूं?
0: 26 साल की उम्र में अगर थकान है तो बाकी पैरामीटर्स उनका देखना पड़ेगा, लाइक हो सकता है इनको विटामिन डी, कैल्शियम या विटामिन बी12 की कमी होगी, उसकी जाँच करानी पड़ेगी।
1: और इसके साथ ही सर, जोड़ों की सूजन को खत्म करने के लिए आयुर्वेद में क्या तरीका है, ये मेरठ उत्तर प्रदेश से अमित कुमार वर्मा जी पूछ रहे हैं।
0: वर्मा जी ने शायद उम्र नहीं बताया,
1: उम्र नहीं लिखी है।
0: मैं ये सोच के चल रहा हूँ ये मिडिल एज के होंगे
1: जी।
0: तो जनरली मिडिल एज में जो आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस विच इज एज रिलेटेड, और दूसरा है वो थोड़ा अलग है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, बहुत सारे अलग अलग कारण है, तो हम ये मान के चलेंगे इनको एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। तो एज रिलेटेड आर्थराइटिस के लिए महायोगराज गूगल या योगराज गूगल 2 गोली 2 बार सवेरे शाम ले, ये प्रिलिमिनरी एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, इससे जनरली ठीक होता है, अगर नहीं होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाए
1: जी। सर एक सवाल और आया है इसी से रिलेटेड, 37 साल इनकी उम्र है, सरिता विहार से अनमोल जी लिख रहे हैं कि डेली 50 किलोमीटर साइकिल में चलाता हूं, क्या आयुर्वेद इसे सही मानेगा?
0: ये बल के ऊपर डिपेंड करता है, आयुर्वेद ने ये कहा है कि हर इंडिविजुअल अलग है।
1: अच्छा।
0: कोई 2 कदम चलने से थक जाता है, उसको 10 कदम नहीं चलना चाहिए, जितना वो चल सकता है उतना चले, आपके बल के हिसाब से सारा काम करे, तो उनको अगर 50 किलोमीटर चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो चला सकते।
1: अच्छा सर, तो अगर किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप साइकिल चलाते रहिए, और फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत ही खूबसूरत गाने को सुनने का, उसके बाद लौटेंगे और फिर बात करेंगे सर से।

0: तो सर थकान की हम बात कर रहे थे, मेंटल स्ट्रेस भी उसी से आता है। आजकल हम देख रहे हैं कि थकावट शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल आया है हमारे पास। बलजिंदर सिंह पूछ रहे हैं, उम्र इनकी 31 साल है, 5 साल से ज्यादा वक्त हो गया इन्हें वर्क फ्रॉम होम करते हुए, घर से बाहर कम निकल पाते हैं क्योंकि काम के बाद काफी हद तक थक जाते हैं, तो अकड़न भी महसूस करते हैं शरीर में। तो पूछना चाह रहे हैं कि लाइफस्टाइल में क्या ऐड करना चाहिए या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे इन्हें अच्छा महसूस हो।
1: हमारे जो लिम्ब्स है ना, अपर लिम्ब्स जैसे हाथ हैं, जैसे पैर को लोअर लिम्ब्स बोलते हैं, इसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स को अगर काम नहीं देंगे तो उसमें अकड़न या स्टिफनेस आ जाता है, विच इज़ वेरी कॉमन नेचुरल। और ये काफ़ी साल से, बल्कि वो घर पे है क्योंकि काम उनका ऐसा है, तो हो सकता है विटामिन डी की कमी भी होगी। तो विटामिन डी की कमी होती है तो साथ साथ कैल्शियम की भी कमी हो सकती है, और वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उन्होंने बताया नहीं, हो सकता है विटामिन B12 की कमी होगी, और भी बहुत सारी कमियां होंगे। तो एक बार इन चीज़ को टेस्ट कराना पड़ेगा, और सवेरे उठ के कम बाहर निकले, 1 घंटा घूमे, फिर आए, फिर अपना काम कर ले, इतना टाइम तो मिलता होगा इनको
0: जी। और सर एक और सवाल है, उम्र है 40 साल, मोहम्मद इम्तियाज साहब का ये सवाल है कि ना तो बीपी की प्रॉब्लम है इन्हें और ना ही शुगर की, लेकिन कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, तो क्या करें।
1: इनको बीपी शुगर नहीं है तो थकान नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है, उनका वर्क रिलेटेड कोई स्ट्रेस होगा या कोई और कारण होगा, उसके लिए रूटीन ब्लड टेस्ट इनको कराने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा क्या है
0: जी। सर जैसा कि डिजिटल दौर है आज का, तो स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही रहा है, साथ ही नए नए कल्चर्स भी हम फॉलो करने लगे हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के देखा गया है कि अक्सर सप्लीमेंट्स या फिर कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की भी अगर हम बात करें तो लोग बिना किसी सलाह के लेने लगते हैं, ये किस हद तक सही है और इसको किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए।
1: आप अगर अपने खाने में वो चीज़ नहीं

0: यूज़ कर रहा है जो यूज़ करना चाहिए। जो पालक से मैं शुरू करता हूँ, जैसे पालक है बहुत लोग नहीं खाते आजकल, पहले हम लोग खाते थे, वैसे ही जो है ड्रम स्टिक्स है, ड्रम स्टिक्स भी लोग नहीं खाते हैं। और बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो खाना लोगों ने बंद कर दिया, तो इसलिए जो है ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और ऊपर से आप रोज फोन देखते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, आप कितने करेंगे,
1: बिल्कुल
0: हर रोज एक आता है नई चीज। और उस सप्लीमेंट्स का क्या रिसर्च हुआ है, नहीं हुआ है, कौन सी कंपनी बना रही है, ये किसी को नहीं पता है। वो बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए वो तैयार करते हैं, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा।
1: जी सर, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसिडिटी और ब्लोटिंग की हम बात करते हैं, ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है आजकल। तो रसोई की तरफ अगर हम रुख करें, तो वहां ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें आसानी से मिल सकती हैं वहां से, और जिनसे हम अपनी तकलीफ दूर भी कर सकते हैं?
0: आजकल के दौर में एसिडिटी का वैसे बहुत सारे कारण है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो कारण है दो ही है, वन इज स्ट्रेस, वेदर इट इज मेंटल और फिजिकल, और दूसरा जो है टाइमली नहीं खाना, आपका टाइम जो है मेंटेन नहीं हो पाता है। ये दोनों रीजन से एसिडिटी बढ़ाने के लिए, तो एसिडिटी कम करने के लिए आपका घर ही एक फार्मेसी है, उसमें सब कुछ है। सबसे बढ़िया जो है मैं मानता हूं कि जैसे ये मौसम है, आप मट्ठा, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, जो छाछ
1: छाछ।
0: होता है उसमें और थोड़ा पानी मिला के आप लेते रहिए, आप अजवाइन उसमें छोंक लगा कर भी ले सकते हैं, ये सबसे बढ़िया है, इवन कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं,
1: जी
0: तो ये सबसे बढ़िया एक औषधि है, उसको औषधि की तरह लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा।
1: करमपुरा दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना।
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी
2: 48 वर्ष मेरी उम्र है।
1: जी
2: तो पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर सर दोनों को गुड आफ्टरनून।
1: गुड
0: गुड
1: आफ्टरनून
0: आफ्टरनून
1: सर।
0: जी।
2: जी, जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है डॉक्टर सर, कि जिसको जॉइंट प्रॉब्लम है उसको योगराज गोगल खाने चाहिए। अब मेरे को ये प्रॉब्लम 2004-5 से है, तो मैंने इसके लिए ना वो ऑयल लगाया और तो मुझे तो इससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ा सर। तो अभी मेरी ये प्रॉब्लम जो कि तो बनी हुई है ना, कि गुलाइटिस एप्लिशिया कोई एप्लिशिया कोई बीमारी होती है, तो इन दोनों में मैं आत्मजय से पड़ गया हूँ कि मेरे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गुलाइटिस एप्लिशिया की बीमारी है, पता नहीं क्या है। तो इसके लिए अब मुझे मतलब क्या करना चाहिए, पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पिछले 6 महीने से मेरे लीवर के आसपास जो है ना गर्मी जलन गैस की हो रही है, तो अगर मैं एक फुल्का खाऊं तो मुझे लगता है कि मैंने 4 फुल्के खा लिए। तो पिछले एक हफ्ते से मैंने आयुर्वेदा का एक मतलब लिक्विड आता है जिसे हम सिरप कहते हैं, उसका सेवन
1: जी
2: कर रहा हूँ, तो उससे मुझे कुछ फर्क तो है। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि मेरे को लीवर अल्सर है या फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई है। तीसरा सवाल, मुझे स्किन एलर्जी है, श्वसन एलर्जी है,
1: जी
2: इसका कुछ घरेलू उपाय बताओ, अगर आपके पास आते हैं तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे।
1: जी
2: बड़ी
1: राजेंद्र
2: मोहब्बत।
1: जी, सवाल का जवाब अब ले लीजिए।
0: इनके बेसिकली तीन सवाल है, एक आर्थराइटिस रिलेटेड है और दूसरा लिवर रिलेटेड है और तीसरा स्किन रिलेटेड है।
1: जी
0: हो सकता है ये सारे इंटर रिलेटेड हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो दवाई लिया है वो आर्थराइटिस के लिए लिया, तो उसके वजह से क्या पता लिवर

0: बहुत ध्यान से सोच समझकर ही कोशिश सभी की रहती है कि खाएं। तो सर, बीटरूट को लेकर एक सवाल आया है, चुकंदर को लेकर, उम्र बताई है 75 साल। मनीषा जी का ये सवाल है रांची से कि शुगर की अगर प्रॉब्लम है तो बीटरूट को किस तरह से देखना चाहिए, क्या उसका सेवन किया जाना चाहिए?
1: बीटरूट का सेवन मैडम कर सकती हैं, बीटरूट में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है,
0: जी
1: बीटरूट उनके लिए अच्छा ही है,
0: अच्छा, शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं
1: ले
0: उसको?
1: सकते हैं। एक्चुअली एक और टॉपिक हमें एक बार दोबारा रखना पड़ेगा, बहुत सारे मिथ्स है शुगर के बारे में, तो इस कम अंतराल में तो बोलना मुश्किल है, मगर एक प्रोग्राम हम रखेंगे आगे, केवल शुगर के लिए बात करेंगे।
0: जी। और सर, पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड की भी हम बात करेंगे, गलत है ये सभी जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमें क्या सुझाता है कि इनसे बचते हुए हम नेचुरल इम्यूनिटी को कैसे हम अपनी बूस्ट कर सकते हैं? मतलब मार्केट में जो मिल रहा है वो सही है या गलत है, इसका फैसला कैसे हो?
1: देखिए, जो पैकेज्ड फूड्स है उसमें नेचुरली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ डालते हैं जिससे आपको पेट की समस्या शुरू होगी, कुछ भी समस्या हो सकता है। तो आयुर्वेद में उस जमाने में तो इसके बारे में नहीं बताया, मगर आयुर्वेद में जो बताया है वो ये है कि जो भी सीजन के अनुसार आपको खाना खाना चाहिए, जैसे मैंने वर्षा ऋतु के बारे में बताया, फ्रेश फूड आप ले वो सबसे बढ़िया है, और आपके आसपास जो अवेलेबल फूड है, जो वेजिटेबल्स है वो खाए वो अच्छा है। और तीसरी बात, पानी का ध्यान रखें, पानी को बिल्कुल गर्म करके या ठंडा करके आप लीजिए, ये
0: सर
1: बेसिक चीजें हैं।
0: जी, प्रोटीन और विटामिन B12 ये बहुत एसेंशियल चीजें हैं, और देखा जा रहा है कि लोगों में बहुत गिर रहा है इनका स्तर, तो इसके लिए बेस्ट वेजिटेरियन सोर्सेज बता दीजिए। ये सवाल भी हमारे पास आया है, बलजिंदर सिंह जी ने पूछा है दिल्ली से।
1: देखिए, वेजिटेरियन है तो ज़्यादा अल्टरनेटिव्स उनके पास नहीं हो गए, तो पनीर डेयरी प्रोडक्ट्स वो लोग ले सकते हैं। जिसके पास नॉन वेजिटेरियन का ऑप्शन है वो नॉन वेजिटेरियन अपना सकते हैं, जैसे बहुत सारे वेराइटीज़ है आजकल अवेलेबल है, आप खरीद के ले सकते हैं।
0: जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी हेलो,
2: मैम गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून सर, अपना नाम बताएं।
2: मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी मुजाहिद जी, आप बताएं, पूछें अपना सवाल।
2: डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून जी।
2: डॉक्टर साहब, मैं जो गोलवेटर में स्टोर है 70 mm
1: किडनी में स्टोर।
2: जी, गोलवेटर में
0: गॉल ब्लैडर
2: 70 mm का है, तो क्या आयुर्वेदिक में इसका कुछ है ट्रीटमेंट? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि बेटे का वो है CGHS कार्ड बनावा मेरा, तो अगर इससे अगर सर्जरी कराए तो इसका क्या क्या सिस्टम है?
1: इनके बेसिकली दो सवाल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक बीमारी का। देखिए, गॉल ब्लैडर का सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके लिए कोई दवाई, देसी दवाई ट्राई ना करें, क्योंकि आपका जो उसका जो साइज है बहुत बड़ा है, 70 mm विच इज ए ह्यूज वन, तो वो ना ट्राई करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे दवाई होते हैं जो आपकी बाकी लिवर भी खराब कर देंगे। तो दूसरी बात यह है, CGHS कार्ड है तो आप किसी भी CGHS वेलनेस सेंटर में जाके अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाइए, वो अपने आप आपको सजेस्ट करेंगे सर्जरी के लिए।
0: जी सर, आयुर्वेद के नजरिए से हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना कितना फायदेमंद है, और इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? मतलब क्या हम खा सकते हैं और क्या पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए?
1: ये इतना बढ़िया टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर एक, शायद आपको पता है कि नहीं, वो एक जापनीज एक साइंटिस्ट ने काम किया है।
0: अच्छा,
1: उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो हर चीज के लिए रेस्ट चाहिए, हमारे जो गट है एक तरह का इंजन है, मशीन चलती है, तो मशीन को भी रेस्ट चाहिए, उसके साथ साथ जुड़े हुए आपके लिवर है, किडनी है, बहुत सारे अलग सिस्टम से उसको रेस्ट चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं, आप शुरू करिए एक वक्त से, जैसे नाइट आपने नहीं खाया, संडे का रात को मत खाइए, अगर आपको अच्छा लगता है फिर नेक्स्ट 2-4 हफ्ते के बाद आप दोपहर का भी खाना छोड़ सकते हैं, मगर पूरा दिन छोड़ना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एसिडिटी होगी, शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आप एक एक वक्त छोड़ के आप ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है।
0: सर, बातचीत का जो सिलसिला है उसे इसी तरह से जारी रखेंगे, फिलहाल एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ नाज और आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, जहां बात हो रही है आपकी सेहत की और सेहत से जुड़ी परेशानियों की भी। आयुर्वेदिक खान पान और जीवन शैली पर आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर टी दिवाकर राव सर, जाने माने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं और CGHS में CMO यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। तो सर, बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: हेलो, मैं
1: जी, आपका नाम बताइए प्लीज।
2: जी मेरा प्रश्न ये है कि रात को ना मेरी मम्मी जी के जो पैर की नसें अचानक से खड़ी हो गई थी।
1: ओके,
2: ऐसा क्यों होगा?
1: पैरों की नसों में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, रात में अचानक से अकड़ गई हैं शायद, ऐसा कुछ कहें।
3: मैडम की उम्र तो नहीं बताई होगी। वैसे इसमें जनरली जो है ये जो थकावट होती है लोगों को, तो मसल्स के अंदर जो है जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है वो कम

0: जाता है, तो अचानक जो है पिंडली पकड़ना बोलते हैं ये लोग, उसके लिए जो है कोई भी घर पे अगर मसाज वाला तेल है उसको लगाए और थोड़ा सा सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी लेते रहे, वो उससे छुटकारा मिलेगा उसे।
1: जी, इसके साथ ही सर एक और सवाल आया है गुजरात से, ज्योति पूछ रही हैं कि 72 kg, 72 किलो इनका वजन है, शुगर बंद कर दी है, फ्राइड फूड भी नहीं लेती हैं, डेली 20 सूर्य नमस्कार भी करती हैं, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है?
0: 20 सूर्य नमस्कार करना ही बहुत बड़ी बात है
1: जी, बिल्कुल।
0: और वेट कम नहीं हो रहा है और शुगर चीजें जो बंद कर दी मैडम, हो सकता है इनको कुछ और टेस्ट कराने पड़ेंगे, एक बार थायराइड का टेस्ट करा ले उसके बाद फिर संपर्क करें।
1: अलका जी का भी एक सवाल है, दिल्ली से है और उम्र है 46 साल, रिपोर्ट्स बता रही हैं इनकी कि स्लाइटली एनिमिक हैं, और एज अ वेजिटेरियन कौन से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए?
0: ड्राई फ्रूट्स जितने भी है, डेट्स वगैरह अच्छा है, इवन ड्रम स्टिक्स मैंने कहा वो अच्छा है, पालक भी अच्छा है, ये ले सकते हैं, इसी से बहुत हद तक सही हो जाए, ड्रम स्टिक्स जरूर ले।
1: बढ़ता वजन सर एक बहुत ही बड़ी परेशानी है जिससे लोग आजकल परेशान हैं, तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए सबको, तो क्रैश डाइट का कल्चर बहुत बढ़ रहा है, मतलब कैलोरीज इंटेक बहुत तेजी से कम कर देते हैं, तो आयुर्वेद इसे सही मानेगा या गलत?
0: बिल्कुल नहीं मानेगा
1: जी।
0: पहली बात तो यह है कि सीधा सीधा मैं नकारता हूँ, देखिए हमारा जो सिस्टम है ना, पर्टिकुलर बायोलॉजिकल क्लॉक हम बोलते हैं, उससे चलती है, क्रैश कोर्स से नहीं चलती है, क्योंकि आपको हर दिन कुछ अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, कुछ अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो डेली वर्क करने के लिए चाहिए, और कुछ स्टोरेज के लिए फैट भी चाहिए, ये तीनों जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि किसी एक को बंद कर दिया या बिल्कुल खाना ही बंद कर दिया, तो बॉडी का जो है ना नेगेटिव रिएक्शन शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने खाना ही बंद कर दिया तो सबसे पहले स्टमक में ही आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, एसिडिटी शुरू होगी, उसके साथ साथ आप भूख ना लगने का एक कारण भी आप ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो उससे और एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो ये विशेष साइकिल होगा, तो इसको जितना हो सके अवॉइड करें। जो रूटीन है वो हमारा रूटीन सही है, रूटीन क्या है, टाइमली खाना और नियमित रूप से और जितना जरूरी है आपको उतना ही खाना।
1: जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से, जी स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए सवाल पूछिए।
2: कस्बा किठौर जिला मेरठ से जी।
1: जी
2: सर, तो हमारे जो हैं घर से उनके गुर्दों में पथरी आई है, दोनों गुर्दों में 8-8 mm।
1: जी
2: सर, उसके बारे में पूछना था जी, आयुर्वेद में क्या है इसके बारे में कुछ?
0: देखिए 0-5 mm एंड 5-10 mm, ये 10-15 mm तो वो सर्जिकल हो जाएगा, 0-5 एंड 5-10, 0 मतलब 1-5 आप मान लीजिए, तो इसमें ये लोग ट्राई कर सकते हैं दवाई, और मगर एक ही चीज है, वो कहाँ पर है वो डिपेंड करता है कि किडनी के किस जगह पर है, किडनी में अगर मान लीजिए वो नीचे है किडनी के तो वो फ्लश आउट नहीं होगा, अगर ऊपर है वो तो गिरने का चांस है, चंद्र प्रभावटी ले सकते हैं
1: जी। सर इसी के साथ मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि हम इससे पहले बात कर रहे थे क्रैश डाइट की, आपने बताया कि कैलोरीज इंटेक को एकदम से कम नहीं करना चाहिए, तो सर ये कैसे मालूम हो कि कितनी कैलोरीज किस वजन वाले के लिए सही है, अगर वजन कम करना है तो उसमें कितनी कटौती जायज है?
0: देखिए जो एवरेज इंडिविजुअल है उसको 1500 से 2000 किलो कैलोरी तो मिनिमम चाहिए, जो आपकी रूटीन एक्टिविटी जो एक्सरसाइज करते हैं चलते हैं तो उनको थोड़ा 500 और ज्यादा, मतलब 2500 तक जाता है, तो मान लीजिए किसी को 1500 और 2000 के बीच में है उनका इनटेक, अगर वो कम करना चाहता है तो वो 1200 तक या 1500 तक ला सकते हैं, वो 500 तक नहीं ला सकता। फॉर एग्जाम्पल दो रोटी सब्जी दोपहर में और दो रोटी सब्जी शाम को, वो आपको 10 से 1000-1200 आपको अमाउंट होगा, अब ब्रेकफास्ट आप 200-300 और जोड़ लीजिए तो वो बन रहा है 1500, वो आपके रूटीन एक्टिविटी में ही वो निकल जाएगा, अब उसको भी आप कम करेंगे आपको थकावट होगी
1: और उसको फिर लॉन्ग टर्म ले जाना भी मुश्किल
0: होगा
1: जी। सर इसी के साथ डिनर स्किप करने का भी बहुत कल्चर है आजकल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: डिनर एक्चुअली स्किप मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, डिनर आप अर्ली करिए, मतलब जनरली लोग 10 बजे 11 बजे खाने की आदत है दिल्ली में, आपने देखा होगा क्योंकि लोग पहुंचते ही जो 9:30 to 6 वाले हैं 8 बजे पहुंचते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं, फिर कुछ टीवी देखते हैं, फिर 10-11 बजे खाना खाते हैं, वो ना खाए, उससे अच्छा है जब भी आप घर पहुंचेंगे तो आप लाइट खाना लीजिए, चाहे एक रोटी लीजिए, लाइट फूड इज ऑलवेज एडवाइजेबल।
1: और सर बिजी शेड्यूल की हम अभी बात कर रहे थे, एक कॉलर ने भी हमसे पूछा था कि उसमें क्या होता है जब शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है तो हम खाना बना

0: खाने के लिए और उसे खाने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आयुर्वेद हमें क्या उपाय देता है, ऐसी कौन सी डाइट्स हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कम समय में एक अच्छी डाइट को तैयार भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं?
1: सवेरे आप महाराजा की तरह खाइए, आयुर्वेद यही कहता है। सवेरे जितना हो सके आप ज़्यादा लीजिए, दोपहर में उससे भी कम और रात को बिल्कुल कम लीजिए। तो सवेरे आप अगर रोटी भी लेते हैं, दो लेते हैं, तो उसकी जगह चार लीजिए। और घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, घी लगा सकते हैं सवेरे, क्योंकि आप दिन भर काम करते हैं, दोपहर में आपका खाना बन नहीं पा रहा है, तो आप उससे आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मगर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिल्कुल ना खाएं,
0: जी
1: नियमित रूप से 2 बार 3 बार आप खाना ही पड़ेगा
0: जी
1: आपको।
0: तो रेडी टू ईट वाले ऑप्शंस पर ना जाएं,
1: हाँ,
0: ताजे
1: ताजे।
0: और सैलेड्स को यूज कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हेलो,
2: नमस्कार डॉक्टर।
0: नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं दिल्ली पालन से बात कर रहा हूँ।
0: जी अपना नाम बताइए।
2: अमर कृष्ण लाल।
0: जी अपना सवाल पूछिए सर।
2: मेरा सवाल यह है कि मुझे रात को 3-4-5 बार इंजेक्शन के लिए उठना पड़ता है,
0: जी
2: नींद खुल जाती है, मूड ड्राई हो जाता है,
0: सर, उम्र
2: इसीलिए।
0: उम्र कितनी होगी आपकी?
2: मैं 70 जी।
0: अच्छा
2: सुबह और रात को उठना पड़ता है,
0: जी
2: और एक ये सांस लेटने के बाद सांस मतलब जल्दी खांसी बहुत आने लगती है,
0: हाँ
2: ये तो काम आएगी। और खाना मैं रात को शाम के टाइम 1 गिलास सूप लेता हूँ, चुकंदर टमाटर गाजर का, और खिचड़ी खाता हूँ रात में, और एक रोटी।
0: सर, क्या शुगर की प्रॉब्लम है आपको?
2: शुगर की खाली पेट तो मेरा 107 होता है, और खाने के बाद 180 हो जाता है।
0: जी
1: उनको शुगर की समस्या कह रहे हैं वैसे है, और रात को उठते 3-4 बार ये कह रहे हैं। हो सकता है इनको प्रोस्टेट का भी समस्या हो, क्योंकि इस उम्र में प्रोस्टेट बढ़ता है। तो प्रोस्टेट क्या करता है, वो पेशाब को जो है ना पूरा एवैक्यूएट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा जरा रह जाता है, फिर वो इरिटेट करता है, फिर दोबारा उठ के फिर जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए या तो उसका वेट कराना पड़ेगा, वेट कितना है वो देखना पड़ेगा,
0: जी
1: उसके हिसाब से इलाज शुरू होगी।
0: जी एक और सवाल आया है हमारे पास, नीदरलैंड से आया है रविंद्र पाठक, आशा पाठक जी का। बता रहे हैं कि डायबिटीज और थायराइड की प्रॉब्लम है, एज है 61 और वेट है 49। तो क्या ये वेट ठीक है या नहीं, इसके लिए शायद इन्हें हाइट भी बतानी चाहिए थी, बट सर क्या सजेस्ट करेंगे?
1: जैसे वैसे लग रहा है कि अंडर वेट ही होंगे, अंडर वेट है तो ये थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि शुगर भी है और एक बताया क्या
0: थायराइड,
1: होता,
0: थायराइड।
1: थायराइड भी है, तो वो हाइपो है कि हाइपर है वो पहले पता लगाना जरूरी है। हो सकता है हाइपर हो इनको, तब वेट कम होता है उसमें भी, अगर शुगर के कुछ कंडीशंस में भी वेट कम होता है तो इसकी जाँच होनी चाहिए।
0: जी सर, एक और सवाल है, रणबीर कुमार जी जमशेदपुर से पूछ रहे हैं कि इनके भाई के लिए ये पूछना चाह रहे हैं। 33 साल उम्र है और डॉक्टर ने जांच के बाद बताया है कि यूरिनरी ब्लैडर काम नहीं कर रहा है, ब्लैडर में एक पाउच एक्स्ट्रा बन गया है, तो यूरिन डिस्चार्ज में भी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए आयुर्वेद क्या कुछ राय देता है
1: ये
0: इनको?
1: मुझे लगता है सर्जिकल की तरफ
0: इशू
1: जा
0: है।
1: रहा है, तो इनको सर्जरी में ही दिखाना ठीक रहेगा।
0: ड्रमस्टिक्स ना मिलें तो सहजन की पत्तियां क्या इफेक्टिव होंगी, ये
1: बहुत
0: सवाल
1: अच्छा
0: भी है।
1: सवाल किया है,
0: जी
1: बिल्कुल ये साउथ में खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं,
0: जी
1: पत्ते पत्ते खा सकते हैं ड्रमस्टिक की सहजन।
0: तो सर सहजन की तरह और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं या कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में शामिल कर लेने भर से ही फायदा पा सकते हैं?
1: चौलाई बहुत लोग नहीं खाते हैं, चौला एक अच्छी चीज़ है, यहाँ मैंने कम देखा है, साउथ में खाते हैं, चौला एक अच्छी चीज़ है, पालक बढ़िया चीज़ है, जो भी सीजनल आपको मिल रहा है वो सब खा सकते हैं आप।
0: जी बिल्कुल। सर आगे बढ़ें और उससे पहले एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे सर, कोई पसंदीदा गाना हो आपका, जरूर हम सुनेंगे उसे।
1: हाँ बहुत सारे गाने हैं, मगर मुझे एक गाना बहुत पसंद है जो शैलेंद्र जी ने लिखा है, जिसको हम
0: जी
1: कविराज भी बोलते हैं, ये शायद अनाडी मूवी का है, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी
0: वाह,
1: होशियारी,
0: बहुत ही खूबसूरत गाना है, तो चलिए
1: शंकर जयकिशन जी के वो म्यूजिक है।
0: जी।

0: अगला सवाल ले लेते हैं। आनंद सिंह जी पूछ रहे हैं, 30 साल इनकी उम्र है और 76 किलो इनका वजन है, पूरा दिन सुस्ती और कमजोरी महसूस करते हैं। श्रावस्ती यूपी से इन्होंने ये सवाल भेजा है।
1: 30 साल उम्र है,
0: 76 वजन है।
1: हाइट लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, हाइट थोड़ा सा हायर साइड लग रहा है मुझे, 76 में भी लिखा नहीं है, तो इनको जनरली क्या है, रूटीन टेस्ट में ये पता लगेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और उन्होंने ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया नहीं है, तो कहना मुश्किल है
0: जी। सर, आहार की हम बात कर रहे थे, तो विरुद्ध आहार, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, इसकी परिभाषा आयुर्वेद में किस तरह से दी गई है, और जाने अनजाने में हम ऐसे कौन से फूड आइटम्स को एक साथ खा लेते हैं जो हमें नुकसान देते हैं?
1: एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा कि शायद पूरे जितने भी जो वर्ल्ड के मेडिकल सिस्टम्स है उसमें शायद आयुर्वेद में ही सबसे एक्सटेंसिवली मैं कह सकता हूँ विरुद्ध आहार के बारे में बताया था। उन्होंने उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्या बीमारियां हो सकती है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो भी बताया। फॉर एग्जाम्पल, मछली के साथ दूध जो लोग नहीं खाते हैं, अंडे के साथ भिंडी लोग खाते हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो जनरली नहीं खाते,
0: नहीं खाना चाहिए।
1: हाँ, नहीं खाते भी है और खाना भी नहीं चाहिए। और गरम और ठंडे चीज लाइक गुलाब जामुन और आइसक्रीम लोग खाते हैं आजकल। जो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, जो एक्सट्रीम्स होते हैं ना, एक्सट्रीम्स को आप कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ नुकसान होता है, ज्यादातर स्किन डिसीजेस होंगे और कुछ अलग लिवर किडनी और भी बहुत सारे बीमारियां होने का संभावना है।
0: जी सर, किस तरह की बीमारियां या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर विरुद्ध आहार हमारी डाइट में है?
1: सबसे पहले तो डाइजेशन में असर पड़ेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो होते नहीं है जनरली। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो डाइजेशन से ही 100 बीमारियां पैदा होते हैं, आपका एसिडिटी शुरू हो जाएगा, फिर ब्लोटिंग होगा, उसके बाद आपको स्ट्रेस बढ़ेगा।

0: जाएगा, वो अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपका लिवर के कुछ पार्ट्स खराब हो जाएंगे, वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, तो ये सब विशेष साइकिल बनेगा।
1: जी, सतीश कुमार जी ने एक सवाल भेजा है, उम्र है 64 साल और वजन है 91 किलो। रोहिणी दिल्ली से भेजा है सवाल कि कमर में दर्द महसूस करते हैं, MRI करवा रखा है और डिस्क बल्ज बताया है, नस भी दबी हुई है, क्या सजेस्ट करेंगे सर?
0: ये इसमें जनरली क्या है, जब ओवरवेट होता है तो एक्चुअली एब्डोमेन बल्ज होता है, जैसे एब्डोमेन बाहर की तरफ पुल करेगा आपका जो स्पाइनल कार्ड के ऊपर जो नॉर्मल कर्वेचर है वो डिविएट हो जाएगा। जैसे डिविएट होगा दो बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है, जैसे कान होता है हमारा, उसका जो टेक्सचर आपने देखा मुलायम होता है, वैसे एक कार्टिलेज होता है उसको डिस्क बोलते हैं, वो उस एरिया से क्योंकि कर्वेचर बदल गया तो वो बाहर आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसके वजह से सूजन होगा, फिर उसके बाद आपका नस में भी वो प्रॉब्लम शुरू होगी। तो उसके लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट वो करा सकते हैं, कुछ पंचकर्मा टेक्निक्स हैं, वो कोई भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है इधर सरिता विहार में, उधर खेड़ा डाबर में एक चरक हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट का, वहां जाके करा सकते हैं।
1: जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहां से?
2: मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ, मुझे पूछना है कि वर्षा ऋतु चल रही है
1: जी,
2: तो वर्षा ऋतु में क्या आहार विहार होना चाहिए, मतलब क्या ना खाना चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं, धन्यवाद।
0: अच्छा अच्छा सवाल है, वर्षा ऋतु में सबसे पहला जो है फ्रेश फूड और जो गर्म खाना है वो खाना चाहिए, और दूसरी बात यह है स्टेल फूड, जो रखा गया खाना या रात को फ्रिज में जो रखते हैं हम लोग, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, और बहुत देर से बाहर रखा हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए।
1: अच्छा, फ्लैक्स सीड्स कौन सी ऋतु में खाने चाहिए, ये सपना जी का सवाल है सर।
0: फ्लैक्स सीड्स को हम लोग तीसी बोलते हैं, अतसी है उसका नाम, तीसी भी बोलते हैं, उसका लड्डू भी बनते हैं, विंटर्स में सबसे बढ़िया है, और इस समय अवॉइड करें और समर्स में थोड़ा अवॉइड करें
1: जी। और सर इसी के साथ वेट मैनेजमेंट पर हम लौट कर आते हैं एक बार, ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जो सजेशंस मिलते हैं लोगों को वो कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने के मिलते हैं, जैसे दाल और सब्जियां तो लेनी है उसमें, लेकिन कार्ब्स छोड़ने हैं, रोटी चावल को छोड़ देना है पूरी तरह से, कई तरह की डाइट्स इस वक्त कल्चर में है, तो आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है?
0: इस बारे में आयुर्वेद ने कभी नहीं कहा, वो हमेशा संतुलित आहार ही कहा है, जिसमें आपका फैट्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और प्रोटीन की मात्रा भी हो। प्रोटीन आपको बेसिकली जो वेजिटेरियन हो तो दाल में मिलते ही हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है बहुत सारे, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स का भी इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया एक खाना है।
1: और सर अगला सवाल जुड़ा है वाटर इनटेक से, हमने बात की कि कितना जरूरी है वाटर इनटेक, लेकिन कितना, कब और किस तरह से उसको हमें लेना चाहिए?
0: ये बहुत बढ़िया सवाल है, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, एक मेरे यहाँ पड़ोसी है, वो सवेरे उठते हैं 2 लीटर पानी पहले पीते हैं, उसके बाद ही सारा काम करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे कमजोरी है, उस मैंने जो बोला उसी में उसका आंसर है, 2 लीटर आप पानी पियेंगे उसके साथ साथ आपके जो बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स है वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, वो बाहर निकल गए, तो उसका मतलब यह है कि आप पानी पीजिए विथ रेगुलर इंटरवल्स, जैसे आपने 1 ग्लास इज 250 ml होता है उसमें, 200 से 250, आपने एक बार पिया फिर 2 घंटे के बाद लीजिए, फिर उसके 2 घंटे के बाद लीजिए, और जब जरूरी है तब उसको थोड़ा बहुत ज्यादा लीजिए, जब जरूरी नहीं है उसको कम कर दीजिए, जैसे विंटर्स में कम जरूरत पड़ती है, समर्स में और ये बारिश में ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो 2 से 2.5 लीटर आप पी सकते हैं, मगर इकट्ठा नहीं, एक साथ नहीं पीजिए, उसको इंटरवल्स में लीजिए।
1: सर स्किन से रिलेटेड एक सवाल आया है, इनकी वाइफ है राज रानी जी, इनका नाम है, एज 68 साल बता रहे हैं, रोहिणी से सवाल है कि नोज पर एक निशान हुआ था और हार्पिस कोई बीमारी इन्हें डायग्नोस हुई है, तो इसका कोई इलाज है?
0: हर्पिस एक वायरल डिसीज है जिसमें आपको नोज में, उन्होंने बताया नहीं कहाँ से कहाँ तक हो, जनरली एक पैटर्न होता है जो नीचे नस होता है वो फॉलो करता है, वो सीवियर पेन होता है उस समय, अब तो पेन नहीं रहा होगा, उनको ये कह सकते हैं बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल्स है जो लगाने से उसमें अगर कोई डिस्कलरेशन हुआ है वो हट सकता है, मगर जो हर्पिस है वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आया होगा और निकल भी गया होगा।
1: ओके सर, बालों की देखभाल कैसे करें, आयुर्वेद इसके लिए क्या सुझाव देता है, शिव जी का सवाल है ये मेरठ से।
0: बालों के लिए सबसे पहले

0: मसाला जो है खाने में ही तेल बहुत सारे हैं जो नेचुरल तेल होते हैं। सर पे लगाने से, तेल लगाने से अगर अगर बाल उगते तो सबके पास बाल होना चाहिए था। तो आप जितने भी डाइट है वो सप्लीमेंट्रीज आपके खाने में ही है। फॉर एग्जांपल आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको चाहिए वो आप खा सकते हैं। बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स है वो लीजिए, घी लीजिए, दूध आप ले सकते हैं, अश्वगंधा एक चूर्ण है आयुर्वेद का वो ले सकते हैं। ये सब करने से बाल की जो हेल्दीनेस है वो बरकरार रहेगा, तेल लगाने से नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल सर, आयुर्वेद की बताई कुछ जड़ी बूटियां भी अब आपसे जानना चाहेंगे जिनके रोजमर्रा सेवन से हम कई मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं, या अगर वेट मैनेजमेंट की भी बात करें, डायबिटीज की बात करें, तो एक कुछ कॉमन ऐसी चीजें जरूर आपसे जानना चाहेंगे जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए।
0: इस ऋतु के लिए मैं बताऊंगा जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एक मेडिसिन आती है हरड़ जी। हरड़ का चूर्ण आता है जिसको हरित की बोलते हैं, वो चुटकी भर आप एक बार लीजिए दिन में, आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इस ऋतु में, दो महीने के जो भी है अभी अगस्त में ख़त्म ही हो जाएगा, वो बढ़िया चीज़ है। बाकी अश्वगंधा एक रूट है बेसिकली, वो आप दूध से आप ले सकते हैं। जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो त्रिफला चूर्ण 1 से 3 ग्राम ले सकते हैं। एक शंखपुष्पी है, जिनको नींद की प्रॉब्लम है वो शंखपुष्पी एज ए सिरप आती है वो ले सकते हैं। ब्राह्मी है वो भी ले सकते हैं। ये सारे रेगुलरली इजीली अवेलेबल मेडिसिन से हर जगह मिल जाएंगे
1: जी। बिल्कुल, चाय कॉफ़ी की आदत से भी सर ज़्यादातर लोग परेशान हैं, तो आयुर्वेद इसका क्या रिप्लेसमेंट बताता है हमें?
0: आयुर्वेद चाय और कॉफ़ी के बारे में जिक्र तो मेरे हिसाब से नहीं किया होगा। बाकी जो डिकॉक्शंस के रूप में बहुत सारे दवाई या दवाई जैसे दिखने वाले चीज़ें बताए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी गर्मी का एक षडंग पानी करके, ये आपको आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। षडंग पानी एक पाउडर है, इसमें आप एक चम्मच उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के उबाल के वो लीजिए, वो आपको रिफ्रेशिंग बिल्कुल लगेगा। ये हर जगह मिल जाएगा इस मौसम के लिए। बाकी विंटर्स के लिए बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, वो मेडिसिन के रूप में ही लेना चाहिए, उसको रूटीनली ना ले।
1: सरोज मल्होत्रा जी साकेत मेरठ से लिख रही हैं कि डॉक्टर सर मेरी एज 70 है, 70 साल है, शुगर फास्टिंग में रहती है 130, क्या ये ज्यादा है, कितनी होनी चाहिए और कितना परहेज करना चाहिए इन्हें इस स्थिति में?
0: इसके साथ साथ अगर वो पोस्टप्रांडियल पीपीबी अगर मैडम लिखती तो थोड़ा समझने में अच्छा रहता। 130 बहुत ज्यादा नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपने जो भी एक्सरसाइज कर रहा है या खाने में जो भी आपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं वो लेते रहिए, और थोड़ा चलने की कोशिश करें अगर हो सके तो।
1: जी सर, खास तौर पर अगर शुगर की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि चीनी का ऑप्शन क्या लें। कुछ लोग गुड़ को प्रेफर करने लगते हैं, धागे वाली मिश्री को प्रेफर करने लगते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? और सर शुगर का जो ये है पॉइंट्स हैं, जो शुगर का मेजरमेंट है, वो कहाँ तक नॉर्मल है और किससे ऊपर घबराने की जरूरत है?
0: जनरली क्या है, शुगर में हम लोग दो चीज देखते हैं नॉर्मली, वो एक है खाने से पहले खाली पेट जिसको बोलते हैं, और खाना खाने के बाद पोस्टप्रांडियल जिसको बोलते हैं, एक होता है फास्टिंग खाने से पहले और पोस्टप्रांडियल। ये फास्टिंग जो है 100 के आसपास, 110 मैक्सिमम इसके आसपास होना चाहिए, और जो पोस्टप्रांडियल है वो 140 के करीब होना चाहिए। मगर ये सही पैरामीटर नहीं है, इसमें HbA1c करके एक टेस्ट होता है, वो आपको वैल्यू बताएगा 3 महीने का एवरेज। साथ साथ उसको भी कराना ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक दिन का आपका जो शुगर वैल्यू है वो बताता है, बाकी जो HbA1c है वो आपको पूरे 3 महीने का क्या एवरेज है वो बताता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है HbA1c, आपको एवरेज देखना है कि वो कितना है। जनरली वो 5.5 के आसपास है तो ठीक है, उससे ऊपर 6 से अगर ऊपर जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए।
1: तो फिर शुगरी आइटम पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है?
0: शुगरी आइटम पूरी तरह कभी बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा। कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए शुगर चाहिए, थोड़ा बहुत शुगर ले सकते हैं, बाकी चीजें ज्यादा ना ले। जो बहुत सारी चीजों में शुगर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड़ का भी, अब ऐसा नहीं कि गुड़ आपने ज्यादा खा लिया तो शुगर सही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। जो उसको एक लिमिट तक ही लेना चाहिए, और शुगर बिल्कुल बंद करना भी बहुत आपको नुकसान पहुंचाएगा।
1: जी बिल्कुल, बस रिफाइंड फॉर्म में ना हो।
0: हाँ, रिफाइंड
1: उसका ध्यान रखें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है सभी लिसनर्स को भी आपकी इस जानकारी से फायदा होगा। और दोस्तों, इसी के साथ आज की रेडियो डॉक्टर की

0: कड़ी को हमें यहीं पर समेटना होगा और आपसे कहना होगा अलविदा। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सेहत के लिए लापरवाह मत बनिए, जरूरी जानकारी को अपने साथ रखिए और खुश होने के साथ साथ स्वस्थ भी रहिए।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: आकाशवाणी।
1: और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अभी तक के मुख्य समाचार। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नेपाल के विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 392 हो गई है। आपदा में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज हो गए हैं। 1000 से ज्यादा लापता लोगों में 390 भारतीय पर्यटक भी शामिल। भारत ने नेपाल से अपने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने कहा, नेपाल बाढ़ का बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। वित्त मंत्री सीतारमण शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। सरकार ने प्याज की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए

0: बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित निकासी शुरू की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में दो अभियानों में 76 किलोग्राम मेथम फेटामाइन गोलियां जब्त की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा है कि अगर अमरीका अपना रुख बदलता है और दबाव बनाना छोड़ देता है तो अमरीका के साथ कूटनीतिक संबंध फिर शुरू हो सकते हैं। और श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने 1-0 से श्रृंखला जीती। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो ये थे अभी तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
0: जी हाँ, आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये एक क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण यह

दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है, जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह है: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिरदर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खान पान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए, ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना। मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: नमस्कार। हफ्ते के 5 दिन, सुबह की भागदौड़, काम का प्रेशर, टेंशन, ट्रैफिक, किसी का ऑफिस या फिर किसी का स्कूल या फिर किसी की यूनिवर्सिटी, फिर अचानक कैलेंडर पर जाती है नजर तो देखता है ओह टुडे इज फ्राइडे और दिल कहता है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। सो अल्फा जैन थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रोग्राम है अल्फा जैन। तो वही, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में कुछ बात करें आपके साथ, आप सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं रक्षाबंधन की। हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन बहुत ही प्यारा सा ये त्यौहार है, भाई और बहनों को ये जो त्यौहार है समर्पित है। और अच्छी बात यह है कि जो भाई बहन का प्यार है वो हमेशा बना रहता है, बचपन की नोक झोंक से लेकर बुढ़ापे तक। जी हाँ, यही होता है प्यार भाई और बहन का। और जब भाई अपनी बहनों को छेड़ते हैं तो वाकई बड़ा ही मज़ा आता है।

जी हाँ, बड़े उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। और आज कह सकते हैं वही, आज फ्राइडे भी है। और फ्राइडे सिर्फ वीक का आखिरी वर्किंग डे ही नहीं होता, बल्कि एक एहसास होता है थोड़ा मुस्कुराने का, दोस्तों से मिलने का, यानी ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा खुद को वक्त देने का, यानी थोड़ा खुद से मिलने का। आज दुनिया वाकई बहुत तेजी से भाग रही है। हम सब ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, लेकिन क्या एक दूसरे से हम कनेक्टेड भी रहते हैं? सैकड़ों कॉन्टेक्ट्स हैं आपके मोबाइल में भी और मेरे भी। इंस्टा पर भी हमारे हजारों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन कितना हम एक दूसरे को जानते हैं? जिनके नंबर ही हमने अपने मोबाइल में सेव किए हुए हैं, उनको कब से हमने फोन नहीं किया? भाई आज तो रक्षाबंधन है, तो भाई बहनों का मिलना लाजमी हो जाता है। और जो लोग काफ़ी दूर रहते हैं उनकी बात अलग नहीं अलग होती है, लेकिन जो लोग एक ही शहर में हैं, कोशिश रहती है कि वो आज के दिन एक दूसरे से मिल लें। लेकिन अगर मैं इसके अलावा बात करूँ, तो क्या हम अपने रिलेटिव से, अपने भाई बहनों से मिल पाते हैं? नहीं ना। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि जब भी वक्त मिले, आपको थोड़ा भी वक्त मिले, अगर वीकेंड है, आपके पास टाइम है, तो आप अपने दोस्तों के साथ साथ अपने रिलेटिव से भी ज़रूर मिलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनाब वो भी अपने ही होते हैं। और जब बात भाई और बहनों की आती है, तो यकीन मानिए एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बचपन की यादों के साथ जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, तो बस समझ लीजिए कि जिंदगी बेहतरीन और बड़ी ही खूबसूरत हो जाती है।

जिंदगी की तो भाई हमारी सबकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन पर होता है। सुबह आंख खुलते ही फोन, रात आंख बंद करने से पहले भी फोन, नोटिफिकेशन आते ही तुरंत हमारा जो हाथ होता है वो फोन की तरफ बढ़ जाता है। कभी सोचा है कि हम सभी फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये जो मोबाइल फोन है जो शायद इस वक्त भी आपके हाथ में ही होगा, ये हमें इस्तेमाल कर रहा है। भाई सोशल मीडिया पर हम अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी जो पिक्चर होती है, जो हमारे पिक्स उस पर हम डालते हैं, उसमें स्माइलिंग फेस होता है, परफेक्ट लोकेशन हम सोचते हैं और आउटफिट के बारे में भी सोचते हैं। फूड कुछ होता है तो जब अच्छा कुछ खाना होता है तब हम सोचते हैं कि भाई चलो ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन साहब, पिक्चर के पीछे की जो जिंदगी है वो मुझे लगता है कि हमेशा परफेक्ट नहीं होती। इसीलिए इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना, आज फ्राइडे है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, आज हम इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पर हमारा सिर्फ और सिर्फ यही काम रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, कोई फिल्म नहीं देख पा रहे हैं, तो हम अपना ज़्यादातर वक्त जो होता है स्क्रीन पर गुजार देते हैं। तो मैं एक छोटा सा आज फ्राइडे चैलेंज लेते हैं। आज कम अज़ कम 1 घंटा, जी हाँ सिर्फ 1 घंटा बिना फोन के हम गुजारेंगे और किसी दोस्त से आमने सामने बात भी करेंगे। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि अगर बहुत ज़रूरी कोई काम है, बहुत ज़रूरी कोई फ़ोन आना है या आपको करना है, तो आपको इस्तेमाल फ़ोन का उस वक्त तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप रील्स देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ रुक कर सोचने की ज़रूरत है। 1 घंटा बिना फोन के किसी दोस्त के पास जा सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं, और नहीं तो भाई अपने घर वाले हैं ना, उनके साथ बैठिए, अपनी टेरेस पर जाइए, बताइए जरा कब से नहीं गए हैं आप, म्यूजिक सुनिए, या बस कोई नहीं भी है तो एक कप अच्छी सी चाय बनाइए और खामोश बैठकर अपने बारे में सोचिए और चाय की सिप लीजिए। क्योंकि जिंदगी दोस्त सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती, जिंदगी हमारी स्क्रीन के बाहर भी होती है। लिहाजा आज फ्राइडे है, जरा सा रुक कर, जरा सा सोच कर अपने बारे में जरूर सोचिए और अपने आप से मिलने की कोशिश कीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम सब के लिए दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी हैं। लिहाजा खुद से मिलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम बाहर ऐसा जाने की सोचते हैं कि अपने आप से ना मिलकर न जाने कहाँ अपना वक्त गुजारते हैं। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा थमिए, मेरे साथ रहिए।

बिल्कुल, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, तू तू ही है. जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं इस वक्त यहाँ जेंजीज की. बिल्कुल, जेंजी जो बहुत कुछ सोचते हैं जिंदगी में, न जाने उनके कितने स्कीम्स होती हैं. लेकिन साथ ही साथ मैं देखती हूँ अक्सर के प्रेशर होता है उनके ऊपर, करियर का, मार्क्स का भी उनके ऊपर प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर होता है, फ्यूचर का उनके ऊपर प्रेशर होता है. यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कई बार, जैसे कि मैं देखती हूँ अक्सर कि जो जेंजी हैं वो बड़ा प्रेशर्स में रहते हैं. अगर खास बात ये भी नज़र आती है कि कई बार कुछ लोग कंपैरिजन भी करने लग जाते हैं, यानी कंपैरिजन का जो प्रेशर होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा दुख देने लग जाता है. कहते हैं ना अक्सर, अरे उसको तो जॉब मिल गई, वो तो हमसे आगे निकल गया, वो तो फलां जगह घूमने चला गया, वगैरह वगैरह. लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा याद रखने वाली बात ये है दोस्तों, खासतौर से जेंसी, कि हर इंसान की जो जर्नी है, जो उसका सफ़र है उसकी ज़िंदगी का, बिल्कुल अलग अलग होता है. हमारी ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है. कभी कभी आपको पता है, धीरे चलना भी प्रोग्रेस लेकर आता है. जी हाँ, याद कीजिए बचपन की उस स्टोरी को, है ना, टॉर्टॉइज और रैबिट की स्टोरी. यहाँ मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन कभी कभी धीरे चलना भी हमारी जो प्रोग्रेस है, जो हमारी कामयाबी है, वो भी लेकर आता है. बल्कि अपने आप से हमें कहना चाहिए कि मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, वहीं से मैं लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. यानी आप यकीन मानिए, अगर आप कोशिश करते हैं तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे. आज फ्राइडे है, कल सैटरडे,

ऑफिस संडे, यानी हमारे पास होगा काफी वक्त अपने बारे में सोचने का, अपनी जो आदतें हैं उनके बारे में सोचने का, या फिर हम कितना स्माइल कर सकते हैं इसके बारे में भी सोचने का, क्योंकि दोस्त स्माइल बहुत जरूरी है। जब आप हंसते हैं तो भाई ये यकीन मानिए कि आपका चेहरा देखकर दूसरा भी जरूर मुस्कुरा सकता है। इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, प्रेशर को कम कीजिए और जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए। आप सुन रहे हैं अल्फा जैन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
4: जी हाँ, दिल से दिल तक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, और बात हो रही है आपके साथ इस वक्त अल्फा जैन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और फ्राइडे जब आता है दोस्तों, तो बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, और ये भी हम सोचते हैं कि आखिर अब इस वीकेंड पर हमें करना क्या है। बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। वैसे अगर मैं आजकल की बात करूं, तो ऐसे बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सैटरडे संडे भी टाइम नहीं होता, क्योंकि आजकल जो ऑफिस का एक अलग ही सिनेरियो बन चुका है, कई बार सैटरडे और संडे भी ऑफिस जाना पड़ता है ना। अब देखिए ना, हम भी तो अगर कोई भी दिन हो, हम आपसे मुलाकात करने के लिए आ ही जाते हैं। ये तो भाई हमें अच्छा लगता है, क्योंकि दिन कोई भी हो, लेकिन मुलाकात आपसे हो रही है तो हमें और क्या चाहिए, है ना। आपसे ढेर सारी बातें हो जाती हैं, अच्छा म्यूजिक सुन लेते हैं, और क्या जिंदगी में और क्या चाहिए, यही तो है बस। तो भाई अगर मैं ये बात करूं कि भाई जो रिश्ते हैं उनमें भी बहुत कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, लेकिन कई बार यूं भी है कि फ्राइडे जब आता है तो लोग अक्सर पार्टी करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर मेरी अगर आप पर्सनल राय लेना चाहेंगे, अगर मुझसे कोई पूछेगा, तो मैं कहूँगी कि फ्राइडे का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं है, यानी छुट्टी का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं है, पूरा हफ्ता हमने किया काम, और क्यों ना अब थोड़ा सा हम अपने आप से बात करें, खुद से मिलने के बारे में सोचें, खुद से मुलाकात करें, कुछ नहीं तो आराम करें और वो काम करें जो हमें अच्छा लगता हो। अगर आपको टीवी देखना पसंद है, आपको फिल्में देखना पसंद है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप अपनी पसंद के मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैसे आजकल देखा जाए तो ये बहुत कम हो गया है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपके हाथ में कोई किताब होगी तो उससे अच्छा वक्त कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि उस किताब में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, और जो पर्सनालिटी हमारी किताब पढ़ने से पहले होती है वो बाद में नहीं होती। लेकिन हाँ, किताब अच्छी होनी चाहिए, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो भाई आप किसी से बात कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर सकते हैं, उसे बुला सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, अपने भाई बहनों से मिल सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इनमें से भी कुछ नहीं करना चाहते, तो भाई मैं तो ये कहती हूँ कि हर वक्त प्रोडक्टिव रहना ज़रूरी नहीं है, आप इंसान हैं, कोई मशीन थोड़ी ना है। लिहाजा आप अपने हिसाब से ज़िंदगी को गुजारना सीखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी के साथ थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालिए, क्योंकि जनाब भीड़ में अगर ज़्यादा रहे तो ख़ुद भी गुम हो जाओगे। लिहाजा थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए और ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखिए। फिलहाल मेरे साथ रहिए, और गीत संगीत का ये जो खूबसूरत कार्यक्रम है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं।

तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना. अरे भाई, अपने आप को भी देख लीजिए, अपने आप को भी जान लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है. आज फ्राइडे है, क्यों ना हम एक छोटा सा मैसेज

के लिए कि भाई अपनी जिंदगी को हम सिर्फ एक डेडलाइन की तरह नहीं बनाएंगे। काम जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, करियर भी जरूरी है, लेकिन आपकी खुशी भी बेहद जरूरी है। आपका सुकून बहुत जरूरी है और आप खुद भी बहुत बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज थोड़ा कम स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा ज्यादा बात कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए और साथ में थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा कम भागिए और थोड़ा ज्यादा जी लेने की कोशिश कर लीजिए जनाब, क्योंकि जिंदगी दोस्त बहुत प्यारी है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपने बारे में जरूर सोचिए, एक बार रुक कर, थोड़ा सा ठहर कर।

तो दोस्तों, फ्राइडे तो फिर आएगा, लेकिन आज का फ्राइडे वापस नहीं आएगा। इसीलिए इसे सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख मत बनने दीजिए, इसे एक खूबसूरत याद बनाइए। किसी दोस्त को कॉल कीजिए, घर वालों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनिए, और सबसे ज्यादा जरूरी वो ये कि सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है। बिना प्रेशर के जिंदगी को गुजारना सीख लीजिए, फिर देखिए जिंदगी किस कदर मुस्कुराएगी। फिलहाल चलती हूँ, फिर मिलने के वादे के साथ अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक बार फिर आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
1: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है जो अन्य देशों के नागरिक हैं। श्री जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। श्री जायसवाल ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की स्थिति और उनकी सलामती के बारे में नई जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतों भी कम होने लगी हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ोयोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता

सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दंपत्ति पर वर्ष 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। खेलों में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক সময়ৰ পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल नदी के किनारों और बस्तियों में जीवित बचे लोगों और बाढ़ में बह गए शवों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध के टूटने की खबर ने एक बार फिर बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की जिन्हें नेपाल से बचाया गया। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी अब कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीद है कि इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होगा। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो सका है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकश से खेलेंगे।

0: ভজন শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত শ্ৰোতাসকলে অনুৰাধা পৰদোৱাল আৰু অনুপজ্বলতাৰ কণ্ঠৰ ভজন শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ক্ষন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में

0: आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत

0: महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
3: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
4: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले दो वर्षों से छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए

0: सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
2: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद द न्यूज एट 9। The headlines: India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement, ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production